आकाशवाणी कोलकाता। नितो आज तवन पे गायन हाड़दा हाड़मा दोहड़ा बापला ओला कदाई बादुल हेम्ब्रम सपड़ा कदाई रामन बास्के गायन हाड़दा हाड़मा दोहड़ा बापला।

0: पीतो दो चेरी जी कया गो इया दुख दागो ओ कोई बाको बुझली दागो हाय हाय गो
1: गणमुढ़ी ए गणमुढ़ी चिदा दो अनका हमरा रा कना गरम हामे बागियात बना चिता
0: उनी दर्पण दे लहम लेन खान के नपाय को एया सोबान गरम चेदी लया गरम हाड़म में तो हाड़म बिदल रे हो बहु जों लगी दया
1: सारी से चेता आ तो ओकार रे सार सा गुंदो होई गड खाना दोंग ने गिबांग तीस
0: ओना तो बइन बड़ाया अंजो में तो इन भितरी भितरी ते बांग मा जतो ठीक अकदा
1: ओकार रे नि कुड़ी चो
0: ओना हो बइन बड़ाया
1: कथा तो गणम बुढ़ी इन हो उनका गिन आजम अकदा ताहुले खबर दो सारिया गे आदो हाड़म बुढ़ी दो बांग बिन रपड़ा खाना
0: उनी हाड़म दड़पों ओकारे चेदे चिकेदा आगे बढ़ाया
1: राज बसी दो होय
0: हे चया सोबान गड़म उना हो बइन बढ़ाया
1: जक इन्या आजम खाता सारिया गे
0: ओका कथा
1: ओने बांग मा डंगवे कुड़ी गे इना ते कथा रे को मेना सारी कथा दो दा पाल बांग ताहेना
0: हिंदाया चेद उपय गनोआ
1: इंदो आदो चिदिन चिकेया हिरम सिकिर सहाओ में
0: बांग बांग एकल बांग
1: आदो उपय बानु दो गड़म बुढ़ी
0: हाय हाय गो इन दो आदो कतिन से नो आगो एया गरम कोड़ा मेटांग डहर मासिया पांजा उडो कइन में हाय हाय इन दो चाबा कि दिन दोया
1: हापे हापे गरम बुढ़ी आलम रागा उहर होचो वइन में मेना मेना मिटंग डहर मेना आ गरम बुढ़ी
0: डहर मेना मासे मासे लई होत दिन में गरम कोड़ा चेत डहर
1: तोबे गरम बुढ़ी खर्चा मेना
0: ओना तो आलम भवितोआ जहाँ तीन खर्चा रहो एमा मई मासे लई हो रही।

0: या तृणमूल कांग्रेस लीडर और मारेन मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी हो कालीघाट रे आजा ओडा रे रवींद्र जयंती मानाव के मेंते बड़ाया करना। बारगेल ओवर आईपीएल टी ट्वेंटी क्रिकेट रे तेहेन दो राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स किन सामांग दापरामुआ जयपुर या स्वाई मानसिंह स्टेडियम रे खेलर दो सिंगर एआई टाइम पे गेल टी ओक्ते एतव आ होलान होयन खेलर रे कोलकाता नाइट राइडर्स दो इरल विकेट ते दिल्ली कैपिटल्स विरुद्ध रे को जीत करा कना। तेहेना खबर पढ़ा दो नोटेगे मुचे देना
1: पुनसाय मड़गे तुरीगे टुडे तुरी मीटर रे आकाशवाणी कोलकाता इना गीतांजलि उचन तलमा खन उचन उखन सानी आखड़ा पे आजमेता नितो दाजम पे लखन मंडिया पता सेरी

ये आकाशवाणी है। आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है राजकुमार मजुमदार का संतूर वादन। श्री राजकुमार मजुमदार भारत के बहुमुखी संतूर वादकों में से एक हैं। अपनी विशिष्ट वादन शैली और मधुर ध्वनि के लिए वे संगीत प्रेमियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हैं। विशेष रूप से दोनों हाथों से संतूर को उल्लासपूर्ण और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की उनकी कला श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती है। उन्होंने अपने संगीत जीवन की शुरुआत अपने पिता सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक स्वर्गीय संगीत साधक पंडित प्रशांत मजुमदार से तबला की प्रारंभिक शिक्षा लेकर की। इसके पश्चात उन्होंने तबला में उच्च प्रशिक्षण दिल्ली घराने के पंडित प्रेम बल्लभ, फर्रुखाबाद घराने के प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश घोष तथा बनारस घराने के महान तबला वादक पंडित सामता प्रसाद से प्राप्त की। तबला में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के बाद उनकी लय और ताल की गहरी समझ ने उनके संगीत को एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया। इसी दौरान उन्होंने संतूर सीखने की प्रेरणा प्राप्त की और महान संतूर वादक पंडित भजन सोपोरी के सानिध्य में सूफियाना घराने की शिक्षा ग्रहण की। लय और स्वर के प्रति उनकी गहरी समझ ने उन्हें एक उत्कृष्ट वादक के रूप में स्थापित किया, जिसके लिए उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगीत संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया। श्री राजकुमार मजुमदार आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के ए श्रेणी के कलाकार हैं।

0: ये था राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग जनसम्मोहिनी। राग जनसम्मोहिनी के बाद लीजिए अब सुनिए राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग आभोगी। मध्य लय व द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: That was Rag Jansammohini. Continuing his recital, he now presents Rag Abhogi. Madhyalaya and Drut composition is set to Teen Taal.

0: अभी आप सुन रहे थे राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग आभोगी। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे उजित उदय कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: You just heard Santoor Recital by Rajkumar Majumdar. With this, we come to the end of tonight's national program of music. He was accompanied on tabla by Ujit Uday Kumar. This program was earlier recorded in the studios of Akashwani Delhi. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashwani.

जन्म दिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज ही दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार की 75वीं वर्ष

0: प्रणयम जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला परसद बिसेसर के साथ त्रिनिदाद और टोबैगो के नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप का वो स्थान जहां गिरमिटिया भारतीय मजदूर सबसे पहले त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे थे। डॉ जयशंकर ने नेल्सन द्वीप पर त्वरित प्रभाव परियोजना के लिए डॉ कमला परसद बिसेसर के साथ भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ एस जयशंकर ने कहा कि भारतीय सहायता से समर्थित ये परियोजना एक अमर यात्रा की साझा विरासत को संरक्षित और प्रदर्शित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। 230 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल्स 152 पर ही सिमट गई। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से रविंद्र जडेजा ने सर्वाधिक 38 रन बनाए। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 229 रन बनाए। प्रतियोगिता में आज चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरे मैच में रायपुर के शहीद वीर सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिम राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Suvendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal yesterday. Governor R. N. Ravi administered the oath of office and secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, 5 other MLAs including Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Ashok Kirtanya, Nisit Pramanik and Shuddhiram Tudu were sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of various NDA and BJP ruled states, BJP President Nitin Nabin and several others leaders of BJP attended the ceremony. In Tamil Nadu, TVK Chief C. Joseph Vijay yesterday met Governor Rajendra Arlekar at Lok Bhavan in Chennai and staked claim to form government with the support of 120 MLAs. Mr. Vijay is set to take oath as the Chief Minister of Tamil Nadu today. Tamilaga Vetri Karagam, TVK, which emerged as the single largest party with 108 seats in the recent assembly polls, achieved the majority mark of 118 seats in the 234-member house required to form a new government in the state by securing backing from Congress, left parties, Vidudalai Sirithagal Katchi, VCK and the Indian Union Muslim League, IUML. The top brass of the Congress party yesterday held a meeting in New Delhi to discuss government formation in Kerala. The meeting convened by Congress Chief Mallikarjun Kharge at his residence was attended by senior party leader Rahul Gandhi, party general secretary in charge of the state Deepa Dasmunshi, general secretary organization KC Venugopal and senior Kerala leader Ramesh Chennitala and VD Satheesan. The party said Congress Chief Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi will take the final decision on the new Kerala Chief Minister and the name will be announced very soon. Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana today. Mr. Modi will first travel to Karnataka to participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru. He will also inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Thereafter, Prime Minister Modi will travel to Telangana to lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Hyderabad. These projects collectively aim to strengthen connectivity, improve logistic efficiency, enhance safety and provide a better travel experience for people. Later in the day, Mr. Modi will reach Jamnagar on a 2-day visit to Gujarat. India has conducted a successful flight trial of an advanced Agni missile with MIRV, Multiple Independently Targeted Reentry Vehicle System, from Dr. APJ Abdul Kalam Island in Odisha. In a social media post, the Defense Ministry said the missile was flight tested on Friday with multiple payloads targeted to different targets